देख क्या देख बड़ा, ऐसा नहीं चलेगा। वो अभी तुम्हें आया है, वो भाई लोगों को फिर से करने को क्या बोलते हैं।